0: काम ले जाए।
1: वोल्टास मैक्स क्लीन वॉशिंग मशीन, इसका डायना बॉल पल्सेटर जिद्दी मैल को भी बाहर निकाले और बच्चों को बच्चे ही रहने दे।
0: मैक्स क्लीन हर दाग चूम ले जाए।

0: आकर देख ले नजदीक जाकर।
1: अरे तेरी भूला आकर जाकर पीकर लेकर आकर जाकर पीकर लेकर आकर जाकर पीकर लेकर पीकर लेकर पीकर लेकर पीकर लेकर आकर जाकर है।